0: 94 MHz कृष्णसार जत्तिकै तेज
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक
2: टाइम चेक अहिले ठीक 6 बजेको छ
3: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी
4: यो कृष्णसार एफएम
0: 94 मेगाहर्ज कृष्णसार जत्तिकै तेज

0: रंगाव देस मेरो एवरेस्ट
1: यो कृष्ण सार एफएम
2: 94 मेगाहर्ज कृष्ण सार जत्तिकै तेज़।

0: 94 MHz कृष्णसार जत्तिकै तेज
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक
2: टाइम चेक अहिले ठीक 8 बजेको छ
3: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी

0: ರಂಗಾ ಉದಯದೇಶ್ ಮೇರು ಎವರೆಸ್ಟ್
1: खुसीके खबर खुसीके खबर हमार शहर नेपालगंज में ढेर बरस से सेवा डेटी आयल नेपालगंज नेशनल अस्पताल में ढेर विशेषज्ञ डॉक्टरन से रोज दिन स्वास्थ्य सेवा डेटी आयल बा ई अस्पताल में रोज दिन ढेर विशेषज्ञ डॉक्टरन से ओपीडी सेवा देना के संगे ढेर सेवा डेटी रलेक जानकारी कराईटी
2: जस्तक सर्जरी के सक्कु उपचार प्रसूति व स्त्री रोग के सक्कु उपचार नसा व हड्डी रोग के सक्कु उपचार मस्तिष्क व मानसिक रोग के सक्कु उपचार छाला रोग के उपचार नाक कान घाटी रोग के सक्कु उपचार सेवा देती आइलबा
1: ओस्तक सुगर ब्लड प्रेसर मुटु रोग पेट छाती कलेजो संबंधी सक्कु उपचार पैथोलॉजी लैब सेवा वीडियो एक्सरे डिजिटल एक्सरे और सब कुछ सेवा सहित गुणस्तरीय अस्पतालक संगे हरेक महीनक अंतिम शुक्रवार काठमांडू मेडिसिटी अस्पताल के सुगर और थायराइड रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुमन ब्राल ऐना जानकारी फेन कराईटी
2: नोट ई अस्पतालम कार्यरत सक्कु डॉक्टरन से हरेक महीनक अंतिम शनिवार निःशुल्क ओपीडी सेवा देना संगे जांच में 20% विशेष छूट के व्यवस्था करल बा नेपालगंज नेशनल अस्पताल बीपी चौक नेपालगंज संपर्क नंबर 081536465 98249806665 वो 98482804665

0: नाक कान र घाँटीका रोगीहरूको लागि विशेष सूचना।
1: भेरी अञ्चल अस्पतालमा लामो समय काम गरी सेवा निवृत्त प्रमुख कन्सल्टेन्ट ईएनटी विशेषज्ञ डाक्टर रमेश कुमार श्रेष्ठ र हाल भेरी अञ्चल अस्पतालमा नाक कान घाँटी विभागमा कार्यरत ईएनटी कन्सल्टेन्ट डाक्टर सगुन श्रेष्ठसँग उपचारको लागि मिलिजुली मेडिकल हल इदगाह रोड नेपालगञ्जमा हप्ताको सातै दिन सेवा उपलब्ध छ। हाम्रा थप सेवाहरू: एक्सरे, इन्डोस्कोपी, प्रयोगशाला, अडियोग्राम तथा आवश्यक परेको खण्डमा बिरामीलाई अपरेसनको पनि व्यवस्था छ। विस्तृत जानकारीको लागि मिलिजुली मेडिकल हल इदगाह रोड नेपालगञ्ज, सम्पर्क फोन नम्बर 081531380, मोबाइल 9850303479 र 9840213780।
2: ओहो, आज डाई नै मजा लागत हो। मजा से दवाई करेना कहटु।
3: ए तो ओकर लाग कान्ति आरोग्य अस्पताल जाइ न। पश्चिम नेपाल के अनुभवी व उत्कृष्ट विशेषज्ञ चिरफार कैना डाक्टर से विश्वासिलो स्वास्थ्य सेवा यह कान्ति आरोग्य अस्पताल नेपालगंज में मिलत।
2: ए बात तो ठीक कैलो, साच्ची की अस्पताल में का सुविधा मिलत?
3: वहाँ त 24 घंटा इमरजेंसी सेवा, दैनिक ओपीडी सेवा, दूरबीन व लेजर प्रविधि से शल्यक्रिया, जरल घाव उपचार करना संगे एनआईसीयू, पीआईसीयू, आईसीयू, हाईटेक ऑपरेशन थिएटर हो, सुरक्षित प्रसूति सेवा फे वहाँ पा जाइत। छोट बच्चा हो, भर्खर जन्मल बच्चन के सामान्य से लैके जटिल रोग संगे सकु प्रकार के रोग के उपचार फे वहाँ कई जाइत।
2: ए ओसिनो कला से वहाँ जाई मन फे ढुक्क हुईना चाहल रह।
3: हो तो स्वास्थ्य हेरचाह कहले ठीक ठाउ रोजना हो। कान्ति आरोग्य अस्पताल सुर्खेत रोड नेपालगंज, सक्कुमेरिक उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा अक्क ठाउँमा। सम्पर्क नम्बर 081535717। कान्ति आरोग्य अस्पताल, अपने हुकरन के स्वास्थ्य हमारी स्नेहा।
2: कान के समस्या बा उपचार कराइकला कहाँ लैजिना हो?
3: बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेहार केन्द्र मा जाइन, वहाँ त अनुभवी चिकित्सक को वरिष्ठ कान स्वास्थ्य प्राविधिक से हरेक दिन कान के परीक्षण हुइत। ओतरकेल कहाँ हो? वहाँ तो लम्बा समय से कान पक्ति रहना, जीर्ण रोग, काने ढुसी, कान खजुइना, कान कम सुन्ना, कान दम्मा हुइना विटामिन के उपचार और परामर्श वो लम्बा समय से कान पक्ती रहले कान के जालिम पाल परल कान हड्डी खैना रोग के ऑपरेशन कैके उपचार हुईट। वाकर संगे कान कम सुन्ना, विटामिन के लाग कान में लगैना सस्ता व महंगा ढेर प्रकार के कान के मेसिन विटामिन के रोजाई अनुसार के उपलब्ध फे करा जाएत। जस्ते बीटीई, सीआईसी, आरआईसी जैसी मेसिन फे वहाँ मिलत।
2: ए ओसिड हो कला से बुडु हो वहाँ ले जाके उपचार करेले से वजह से सुन से कही ट।
3: एकदम समय में उपचार करेले से उपचार संभव बा। बागेश्वरी स्वास्थ्य सेहार केन्द्र प्राली नेपालगंज छ, फुलटेकरा आर्मी ब्यारेक के सामने, राप्ती रोड, बाँके। संचालक पूरण चौधरी। संपर्क नंबर 9480206697, 9850823697 ओ 9804486697। बहिरोपण निवारण कार्यक्रम में सहभागी हुई नियमित कान के जांच करी।
2: खुशी के खबर, खुशी के खबर। हमार शहर नेपालगंज में ढेर बरस से सेवा डेटी आयल नेपालगंज नेशनल अस्पताल में ढेर विशेषज्ञ डॉक्टरन से रोज दिन स्वास्थ्य सेवा डेटी आयल बा। ई अस्पताल में रोज दिन ढेर विशेषज्ञ डॉक्टरन से ओपीडी सेवा देना के संगे ढेर सेवा डेटी रलेक जानकारी कराईटी।
3: जस्तक सर्जरी के सक्कू उपचार, प्रसूति व स्त्री रोग के सक्कू उपचार, नसा व हड्डी रोग के सक्कू उपचार, मस्तिष्क हो मानसिक रोग के सक्कू उपचार, छाला रोग के उपचार, नाक कान घाटी रोग के सक्कू उपचार सेवा देती आयल बा।
2: ओस्तक सुगर, ब्लड प्रेशर, मुटु रोग, पेट, छाती, कलेजो संबंधी सक्कू उपचार, पैथोलॉजी लैब सेवा, वीडियो एक्सरे, डिजिटल एक्सरे, ओ और सबको सेवा सहित गुणस्तरीय अस्पतालक संगे हरेक महीनक अंतिम शुक्रवार काठमाडौँ मेडिसिटी अस्पताल के सुगर ओ थायराइड रोग विशेषज्ञ डाक्टर सुमन बराल ऐना जानकारी फेन कराइदी।
3: नोट, ई अस्पतालम कार्यरत सक्कु डाक्टरन से हरेक महीनक अंतिम शनिवार निशुल्क ओपीडी सेवा देना संगे जाँचमा 20% विशेष छूट के व्यवस्था करल बा। नेपालगंज नेशनल अस्पताल बीपी चोक नेपालगंज संपर्क नंबर 081-536-465 98-249-80-665 98-482-80-465।

0: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक एक बजे को छ।
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी।
2: बाबा के कान पिरात है, दवाई करावे खातिर कहाँ ले जाई?
3: बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेहार केंद्र जाऊ ना, यहाँ अनुभवी विशेषज्ञ और वरिष्ठ कान स्वास्थ्य प्राधिक लोगन से हर एक दिन कान परीक्षण किया जाता है। इतन कहाँ, यहाँ तो लंबे समय से कान पकते आवा, जीर्ण रोग, कान में यहाँ ढूसी भवा, कान खजुआब, कान से कम सुनाई देव, कान बंद हो, बीमारी लोगों के दवाई दरमत और सुझाव सलाह देते हैं। और साथ ही लंबे समय से कान पकते आवा, कान के जाली में छेद भवा, कान के हड्डी गले वाला रोग के शल्य क्रिया द्वारा दवाई करत हैं। साथ ही कान कम सुने वाले बीमारी लोगों के यहाँ कान में लगावे वाला सस्ता से लेके महंगा महंगा तक मेरे मेरे के मॉडल के कान की मशीन हेयरिंग एड बिरामी लोगों के इच्छा अनुसार उपलब्ध करावत है। बीटी, सीआईसी, आरआईसी जैसन मशीन भी यहाँ उपलब्ध है।
2: ए अस है तो बाबा के यहाँ ले जाए के दवाई करावे से बढ़िया से सुने लगी है तो?
3: हाँ तो समय में यहाँ दवाई करावे से दवाई दरमत संभव है। बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेहार केंद्र प्राली नेपालगंज छ फुलटेकरा आर्मी ब्यारेक के सामने राप्ती रोड बांके। संचालक पूरन चौधरी। संपर्क नंबर 98480-2697, 98580-2397 और 98014-83697।
2: बहिरोपण निवारण कार्यक्रम में यहाँ सहभागी हुआ जाए, नियमित रूप से कान के जांच करावा जाए। खुशी के खबर, हम लोगन के अपने शहर नेपालगंज में यहाँ सालों से सेवा देते आवा रहा नेपालगंज नेशनल अस्पताल में यहाँ विशेषज्ञ डॉक्टर लोगन से दैनिक रूप में यहाँ तमामन स्वास्थ्य सेवा प्रदान होते आवा है।
3: ये अस्पताल में यहाँ दैनिक रूप से तमाम मेर के विशेषज्ञ लोगन से ओपीडी सेवा हो, एक साथ तमाम मेर के सेवा होत रहा जानकारी करावा चाहा जात है। जैसे सर्जरी संबंधी संपूर्ण इलाज,
2: प्रसूति और महिला लोगन संबंधी संपूर्ण इलाज,
3: नस और हड्डी रोग संबंधी संपूर्ण इलाज,
2: मस्तिष्क और मानसिक रोग संबंधी संपूर्ण इलाज,
3: चर्म रोग संबंधी संपूर्ण इलाज,
2: नाक कान और गटई संबंधी संपूर्ण इलाज,
3: शुगर, ब्लड प्रेशर, हृदय रोग, पेट, छाती, कलेजा संबंधी संपूर्ण इलाज,
2: पैथोलॉजी लैब संबंधी संपूर्ण चेक जांच किया जाते है,
3: वीडियो एक्सरे, डिजिटल एक्सरे और संपूर्ण सेवा सहित गुणस्तरीय अस्पताल के साथ हैं। हर एक महीना के अंतिम शुक्रवार काठमांडू मेडिसिटी अस्पताल से शुगर और थायराइड रोग के इलाज के खातिर डॉक्टर सुमन बराल आवश्यक जानकारी भी करावा जाता है।
2: नोट, ई अस्पताल में यहाँ कार्यरत संपूर्ण डॉक्टर लोगन से प्रत्येक महीना के अंतिम शनिवार निःशुल्क ओपीडी सेवा ले साथ जांच में यहाँ 20% छूट के व्यवस्था किया गया है।
3: संपर्क नंबर 081-536-465, 98239-80665 और 98482-80465।
4: वाओ, प्लस टू परीक्षा पनि पास भयो, अब कुन कलेज में भर्ना हुने होला?
5: लहै बधाई छ, अनि तिम्रो उज्जवल भविष्यका लागि उत्कृष्ट विकल्प नेपालगंज बहुमुखी क्याम्पस एनएमसी छ नि।
4: ए हो र, त्यहाँ के पढ्न पाइन्छ त? अनि त्यहाँको विशेषता पनि भन्देउ न।
5: त्यहाँ ब्याचलर अफ बिजनेस स्टडीज बीबीएस तथा एसीसीए कार्यक्रमका लागि भर्ना खुल्ला भइसकेको छ। दक्ष तथा अनुभवी शिक्षकद्वारा गुणस्तरीय शिक्षण, वातानुकूलित एसी कक्षा कोठा, समृद्ध पुस्तकालय, अतिरिक्त क्रियाकलाप, नियमित फिल्ड भिजिट तथा औद्योगिक भ्रमण, आधुनिक शिक्षण वातावरण र विद्यार्थी मैत्री व्यवस्थापन सहित आफ्नो उज्जवल भविष्यको यात्रा सुरु गर्न सकिन्छ।
4: ल, तिमीलाई धेरै धेरै धन्यवाद। त्यसो भए म पनि यही भर्ना हुन्छु।
3: हजुर, प्लस टू परीक्षा सफलतापूर्वक उत्तीर्ण गर्नुभएका सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूलाई हार्दिक बधाई तथा शुभकामना। उच्च शिक्षाको उत्कृष्ट गन्तव्य नेपालगञ्ज बहुमुखी क्याम्पस एनएमसीमा ब्याचलर अफ बिजनेस स्टडिज बीबीएस तथा एसीसीए कार्यक्रमका लागि भर्ना खुल्ला भइसकेको छ।
4: नेपालगञ्ज बहुमुखी क्याम्पस एनएमसी आदर्श ग्रुपद्वारा सञ्चालित। ठेगाना नेपालगञ्ज 10 बाँके औद्योगिक क्षेत्रको ठिक अगाडि। थप जानकारीका लागि सम्पर्क 98580-36577, 98580-28195 र 98580-36811। नेपालगञ्ज बहुमुखी क्याम्पस एनएमसी, सफल भविष्यको बलियो आधार।

0: रेडियो कृष्णसार एफएम 94 मेगाहर्ज कृष्णसार जस तेज
1: कार्यक्रम घर अंगना के अंतर्गत शनिचर के दिन
2: स्वास्थ्य शिक्षा आयुर्वेदिक नुस्खा सहित घर अंगना में हम लोग आवाज आई
1: रेडियो कृष्णसार एफएम 94 मेगाहर्ज से देखा भी जाए और सुना भी जाए।
3: दिन भर चाहे जहां रही हो हमार पिया
2: शनिचर के दिन और साथ ही हमार सखी चंदा
1: और हमार सखी संध्या कार्यक्रम घर अंगना
4: घर अंगना।

0: सखी कहाँ आप बजाए प्रोमो मार भागी भागी घूमत हो।
1: अरे अरे सखी पूछो नहीं, अब का है ना, अब जो है
0: पहले पूछो ना।
1: नहीं पूछो पूछो पूछियो ना, तो जनियो कैसे, यही तो बात है,
0: पूछी ना तो जनबे कस के।
1: हाँ वही तो बात है ना।
0: ठीक ठीक है ना, पूछबे
1: ना, पूछो पूछो पूछो ना, तो हाँ कहा लेट हुआ है, कहा देर हुआ है, हम आपसे पूछी।
0: एक तो समझ में ही ना, वह पूछो ना कहा तो मतलब पूछे
1: मतलब कहे मतलब हमारा है कि पूछो।
0: अच्छा आपसे पूछी,
1: पूछो
0: ये बात और है। हम आपसे अच्छा सखी, हाँ तो अता आज देर का है हुई गोवा।
1: अब सखी अभी ना कहबे कि पूछो ना, अब सखी कहा है कि देर हुई गोवा।
0: हाँ
1: अब गणेश चतुर्थी के अब मतलब गणेश भगवान हैं बैठे हैं ना,
0: तो इमा गणेश भगवान बेचारे का कर रहे हैं आपका।
1: अरे पूजा में यहाँ देर हुई गोवा का समझो।
0: ओ अच्छा, चिल्लाओ ना चिल्लाओ ना,
1: पूजा पाठ में देर हुई
0: ना।
1: नहीं अच्छा नहीं, अच्छा सखी आपका कहे देर हुआ,
0: हम तो आपके सहारा देखित रहा है तभी तो कही थे कि हम प्रोमो बजत है हल्ला मजा, हमारे सखी नहीं दिखा पा रही थी।
1: अच्छा मतलब हमरे बिना काम अधूरे रहा है।
0: काम तो दोनों जना के एक दूसरे के बिना अधूरा है, ये है हानि श्रोता आप लोग जाना जाता है। अब जैसे हम हन सखी नहीं है तो हूँ अधूरा है, अब सखी है हम नहीं है तो हूँ अधूरा है,
1: अधूरा है
0: नहीं? हाँ, अब आप तो कहा थी कि मतलब जब तक संध्या नहीं है तब तक चंदा न निकली है, कहा थी कि
1: नहीं? अच्छा मतलब संध्या जी पहले आई गई है,
0: हाँ
1: तब बाद में चंदा जी आई है
0: ना, अब पहले ना आ जाओ
1: आए गए ना, आए गए बात नहीं है, लेकिन कहा सखी बस अच्छा बात है कि पूजा पाठ में थोड़ा देर हुई गवा।
0: हाँ, हाँ,
1: है ना,
0: समझ गए
1: बस यही
0: समझ
1: गए। आज जो है पता है, आज जो है राधा

0: और हमरे सखी का भी तनी उनके अब वैसे कहिबे तो गुस्सा जी हैं आप लोग ध्यान से सुना जाए तनी उन्हों के गुस्सा कम कह दे और हमारा गुस्सा कम कह दे कैसे अब जैसे हम कहिबे तैसे कहिए आप तो गुस्सा नहीं हो
1: हम का सोचें कि हम कुछ और सोचे रहे हैं कि शायद ये कहे वाली हो
0: नहीं नहीं नहीं ठीक है वो देर तो समय अनुसार कबो हम लोग जल्दी आए भी जावा जाते कबो तनी कारण बस देर होता तो माफ करा जी श्रोता
1: माफ करा
0: समय अनुसार हम लोग तनी देर में आवा
1: का बात है क्या करूं मैं देर करता नहीं देर हो जाती है अरे मेरी किस्मत सो जाती है मगर किस्मत का स्वाभाविक नहीं है उठावेक है ना सखी
0: हाँ तो गणेश जी से प्रार्थना है
1: प्रार्थना
0: कि हमें सखी की किस्मत जो सोई जाते किस्मत का उनका जागरूक कई दिन जाए
1: अच्छा ध्यान दिया जाए किस्मत जागा रहा थे लेकिन कभी कभी सोई जाते वो तो हमारे सखी के गणेश भगवान
0: कोई चीज किस्मत बेकार है
1: जगा दिया
0: अच्छा श्रोता आप लोग इनके स्वागत है कार्यक्रम घर अंगनामा और हम दोनों सखी ये कहा ना कोई रास्ता में नहीं मिल जाओ जाते ना हुए से लड़ते आवाज आए लेकिन यहाँ बैठते खंड शुरू हो जाओ जाते एक दूसरे के बात का है लेकिन आप लोग परेशान न हो जी हमारे नोक झोंक आप लोग यथा स्थान में बैठ के हम लोगों के कार्यक्रम 3 बजे तक सुन दिया जाए
1: हाँ।
0: और कार्यक्रम घर अंगनामा सबसे पहले तो आप लोगों का श्री गणेश जी के जो हम लोगों के आगमन भवा है गणेश चतुर्थी के हार्दिक मंगलमय
1: शुभकामना है
0: और साथ ही सखी आप कहे हो ना कि आज राधा रानी जी के जन्म उत्सव है तो राधा रानी जी की जय हो और राधा रानी जी के जन्म उत्सव ऐसे हर साल खुशहाली के साथ सबके मनावा जाए और आगमन हो माता जी सबके साथ दे
1: राधे राधे
0: उसके बाद अब हम लोगों के जो संविधान दिवस कहा जाता है संविधान के बिना तो देश न चली कहीं के हम लोगों के आज असोज 3 गते संविधान दिवस है तो संपूर्ण नागरिक और संपूर्ण हमारे श्रोता सखी लोगन का आप लोगन का संविधान दिवस के हार्दिक मंगल में
1: शुभकामना है
0: तो यही के साथ
1: तो सखी आज के दिन देखो मतलब इतना चीज मतलब पड़ा है तो थोड़ा तो टाइम लगबे करिए टाइम लग गवा कोई बात नहीं है
0: अच्छा, तो हम का समझ गए हमारे श्रोता भी समझ गए हैं ना कि आपके कहे देर हुई गवा है लेकिन संगीत के तरफ सखी पहले तो हमारे जैसे हर पूजा पाठ में सबसे पहले था स्थान गणेश जी के रहा था है तो अब उनके आज इसे तो उनके 1 हफ्ता 10 दिन 11 दिन उनके नहीं कोई 11 दिन के बरहो दिन देख के ले जाते उनके विदाई करा जाते या 10 दिन के बाद 11 दिन में विदाई करा जाते कोई यथाशक्ति 3 दिन में विदाई करते हैं कोई 5 दिन में कही देते हैं मतलब अपने शक्ति अनुसार और शुभ साहित अनुसार उनके हम लोग विदाई करा जाते
1: हैं हाँ सखी हम समझ चुके हैं आप का कहे चाहते तो आप जो है यही कहे चाहते कि अब कोई भी काम करे से पहले जो है गणेश भगवान के पहले
0: बस, आप तरह समझदार सखी
1: चलो ठीक है समझी तो ऐसी बात नहीं है
0: बस चलो जाए फिर आप कहीं ना पड़ी चलो श्रोता हम लोग गीत संगीत की तरफ फिर आवाजी कार्यक्रम
1: फिर आवाजी

0: हाँ तो सखी,
1: हाँ सखी,
0: अब हम लोग के जितना भी शिकायत रहा है, जो समस्या रहा है, हम लोग श्रोता जी का बताए दिन का है ना, श्रोता आप लोग जान गए हो गई। और आप तो हम लोग विशेष खुशहाली में हन कि गणेश जी के आगमन है चारों तरफ, है ना, हर मोहल्ला माँ, घर घर माँ, और छोटे छोटे मूर्ति भी हम लोग स्थापना करके घर में भी रखा जाता है, बहुत जन रखे लगे हैं, और साथ ही साथ बाजार में इधर उधर तो चारों तरफ इसे पूरा हल्ले है,
1: पूरा चहल पहल,
0: पूरा चहल पहल है। बस कुछ दिन के बाद गणेश जी के विदाई होने के बाद फिर माता जी के भी ऐसे आगमन हुई, तो ये हम लोग के त्यौहार के पर्व अब शुरुआत है, ये है त्यौहार पर त्यौहार आवत जात है।
1: अब सखी जैसे कि अब गणेश विसर्जन होए के बाद जो है, जो है पितृ लोगन के पहले आगमन,
0: हाँ 15 दिन के पितृ आई जाए श्राद्ध
1: के बाद जाता है देवी माता के।
0: अब तो कहा नहींगा कि त्यौहार पर त्यौहार शुरुआत हुई गवा है, तो गणेश जी के जो हम लोग मनावा जाते हैं, और विशेष आज के दिन, अभी तो हम लोग के सोमवार से गणेश जी के विराजमान होएगा, स्थापना होएगा है, अब हम लोग के आज के विशेष दिन जो शनिचर के पड़ेगा, अब आज राधा रानी के जन्म उत्सव है, तो राधा रानी के जन्म उत्सव मनावा हमारे कान्हा जी तो बड़े खुशी हुई है, काहे से वो तो पहले ना आए गए हैं,
1: पहले
0: उनके तो जन्म उत्सव हम लोग मना चुका गया है, छठी बार ही भी होएगा,
1: अब राधा जी आई है,
0: अब राधा जी आई है, तो राधा जी के भी भाई जन्म उत्सव अच्छे से ऐसे मनावा जाए और खुशहाली के साथ, और साथ ही साथ विशेष दिन आज संविधान दिवस भी पड़ा है, जो हम लोगों के देश के मूल कानून के आधार माना जाता है, तो इनके शुभकामना आदान प्रदान भी हम लोगों के साथन है, तो यही क्रम में हमारे सखी बड़ी देर के दिन है आवे में कहा थी,
1: अच्छा हम ही
0: अब अत्ते प्यार से ना देखा जाए कि अच्छा हम ही ना, तो धीरे से कहा मतलब दोनों जना
1: कि अब का है ना, अब सब लोग बिजी है ना, व्यस्त है पूजा पाठ मैया है ना, बताएं ना हाँ, आपका बार बार बताइए,
0: नहीं आप ना बताओ,
1: एक बार बताए दिए होएगा,
0: एक बार बताओ जाता, 10 बार नहीं बताओ जाता, सुनने वाले सुन ली नहीं है, नहीं
1: सुन ली,
0: हाँ
1: वही बात का रिपीट करो,
0: नहीं ना करा
1: तो फिर सखी हम बताए,
0: हाँ बताओ,
1: अब थोड़ा सा
0: सुनी कि ना सुनी,
1: व्यापारिक विश्राम की तरफ चला जाए,
0: एक ये बात ये मेरे बताओ तो आप, हाँ। तो इस तो हम पहले कह रहे हैं सुनी कि ना सुनी है ना, तो ठीक है चला जाए, बातचीत करते रहा जी हम लोग कार्यक्रम में, और फिर व्यापारिक विश्राम के बाद फिर गीत संगीत सुनते हम लोग कार्यक्रम में आवाजी
1: आवाजी।
2: बीर डेंटल
3: नेपालगंज शहर में संचालित अत्याधुनिक सुविधा संपन्न बीर डेंटल में दांत तथा मुख संबंधी संपूर्ण उपचार काठमांडू तथा भेरी अंचल अस्पताल का अनुभवी वरिष्ठ डाक्टर आर के लामिछाने द्वारा उपचार गरिन्छ।
4: डाक्टर लामिछाने द्वारा गरिने विशेष उपचारहरू, दाँत सफा गर्ने, दाँत भर्ने, दाँत निकाल्ने, दुखेको दाँतको जराको उपचार, खाली ठाउँमा दुरुस्त प्राकृतिक जस्तै नक्कली दाँत राख्ने, बाङ्गो टिङ्गो तथा नमिलेको दाँत फिक्स अर्थोडन्टिक प्रविधिद्वारा मिलाउने, गिजाको रोग जस्तै गिजा सुन्निने, रगत पिप बग्ने, मुख गनाउने र दाँत हल्लिने समस्याको उपचार, पहेलो खैरो दाँत, सानो र ठुलो दाँत, छिद्रा तथा ग्याप भएको दाँतलाई कस्मेटिक उपचार प्रविधिद्वारा राम्रो बनाउने, दाँत मुखको चोटपटक तथा बङ्गारका हड्डी भाँचिएको पनि उपचार हुने।
3: सम्पर्क बीर डेन्टल क्लिनिक भेरी अञ्चल अस्पतालबाट 150 मिटर त्रिभुवन चोक तर्फ,
4: फोन नम्बर 081-532-375। नेपालकै एकमात्र अत्याधुनिक डेन्टल क्लिनिक अब नेपालगञ्जमा, सन् 2016 डाक्टर लियोनार्ड लिङ्को फाउन्डेसनद्वारा बेस्ट डाक्टर अवार्डद्वारा सम्मानित डाक्टर प्रतीक श्रेष्ठ, एनएमसी 19393, बीडीएस दिल्ली, एफएजीसी मणिपाल, सर्टिफाइड इम्प्लान्ट एन्ड लेजर डेन्टिस्ट्री अमेरिका, सर्टिफाइड बोटक्स एन्ड फिलर स्पेसलिस्ट युरोप, एडभान्स सर्टिफिकेट इन जेनरल डेन्टिस्ट्री क्यानाडा, मिनी रेजिडेन्सी इन इन्डो डेन्टिक्स साउथ कोरिया, यी विभिन्न देशहरूमा अध्ययन गरेका डाक्टर प्रतीक श्रेष्ठद्वारा उपचार गरिने अत्याधुनिक डेन्टल क्लिनिक अब नेपालगञ्जमा।
3: विशेषताहरू, दुखेको दाँतहरू जराबाट नै भरेर नदुख्ने बनाउने, बच्चाहरूको दुखेको दाँत जराबाट भर्ने, किरा लागेको दाँतलाई भर्ने, दाँत निकाल्ने, दाँतमा खोल लगाउने र दाँत नभएको ठाउँमा दाँत हाल्ने, मेटल क्राउन, बाङ्गो दाँतलाई तार बाँधेर सिधा गर्ने, वृद्ध अवस्थामा भएको बुढाबुढीको पुरा दाँतको सेट लगाउने, दाँतलाई प्रत्यारोपण गर्ने, चाउरी परेको अनुहारलाई राम्रो पार्ने, आँखा तल खाल्टो भएकोलाई भर्ने, सबै उपचारहरू दूरबीनबाट गरिने, डिजिटल एक्सरे सेवा।
2: सम्पर्क गणपति क्लिनिक सुर्खेत रोड नेपालगंज नर्सिङ होम नजिकै कुसुम पेट्रोल पम्पको सामुन्ने पासङलाम रोड जाने बाटोमा, फोन नम्बर 081-531-366 र 98-085-49-451।
5: आमाको उपचार गरौँ भनेको कहाँ जाने होला?
6: कान्ति आरोग्य अस्पताल छँदैछ नि, पश्चिम नेपालकै अनुभवी र उत्कृष्ट विशेषज्ञ तथा शल्य चिकित्सकद्वारा विश्वस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पनि यही उपलब्ध छ।
5: हो र, यो अस्पतालमा के सुविधा छन् नि?
6: चौबिसै घण्टा इमर्जेन्सी सेवा, दैनिक ओपिडी सेवा, दूरबीन तथा लेजर प्रविधिबाट शल्यक्रिया, जलेको घाउको उपचार गरिनुका साथै एनआइसियु, पिआइसियु, आइसियु, हाइटेक अपरेसन थिएटर र सुरक्षित प्रसुति सेवा पनि यही उपलब्ध छन्। अझ यहाँ त बालबालिका तथा नवजात शिशुहरूको सामान्यदेखि जटिल सबै रोगहरूको सबै किसिमको उपचार गरिन्छ नि।
5: त्यसो भए आमालाई लगेर आजै जानु पर्यो।
6: कान्ति आरोग्य अस्पताल सुर्खेत रोड नेपालगञ्ज, सबै किसिमका उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा एकै छाना मुनि।
5: सम्पर्क नम्बर 081535717।
7: बाबा के कान पिरात है, दवाई करावे खातिर कहाँ ले जाई?
8: बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेहार केंद्र जाऊ न, यहाँ अनुभवी विशेषज्ञ और वरिष्ठ कान स्वास्थ्य प्राधिक लोगन से हर एक दिन कान परीक्षण किया जाता है। इतन कहाँ, यहाँ तो लंबे समय से कान पकते आवा, जीर्ण रोग, कान में यहाँ ढूसी भवा, कान खजुआब, कान से कम सुनाई देव, कान बंद हो, बीमारी लोगों के दवाई दरमत और सुझाव सलाह देते हैं। और साथ ही लंबे समय से कान पकते आवा, कान के जाली में छेद भवा, कान के हड्डी गले वाला रोग के शल्य क्रिया द्वारा दवाई करते हैं। साथ ही कान कम सुनने वाले बीमारी लोगों के यहाँ कान में लगावे वाला सस्ता से लेके महंगा महंगा तक मेरे मेरे के मॉडल के कान की मशीन हेयरिंग एड बिरामी लोगों के इच्छा अनुसार उपलब्ध करावत है। बीटी, सीआईसी, आरआईसी जैसन मशीन भी यहाँ उपलब्ध है।
7: ए अस है तो बाबा के यहाँ ले जाए के दवाई करावे से बढ़िया से सुने लगी है तो?
8: हाँ तो समय में यहाँ दवाई करावे दवाई दरमत संभव है। बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेहार केंद्र प्राली नेपालगंज छ फुलटेकरा आर्मी ब्यारेक के सामने राप्ती रोड बांके। संचालक पूरन चौधरी। संपर्क नंबर 98480-2697, 98580-2397 और 98014-83697।
7: बहिरोपण निवारण कार्यक्रम में यहाँ सहभागी हुआ जाए, नियमित रूप से कान के जांच करावा जाए।
9: रंग बहार
10: बर्जर संगै उपहारै उपहार बम्परमा यामाहा रेजियर।
9: बर्जर पेन्सले घर रंगाउनु होस् र लकी ड्र मार्फत यामाहा रेजियर 125 स्कुटर बम्पर उपहार जित्ने मौका पाउनु होस्।
10: साथै 65 इन्चको स्मार्ट टिभी, रेफ्रिजरेटर, वाशिङ मशिन लगायत 350 भन्दा बढी आकर्षक उपहारहरू पनि। घर रंगाऊ, खुशी बढाऊ, उपहार जित्ने अवसर पाऊ।
9: बर्जर पेन्सले।

0: सखी।
1: हाँ सखी,
0: क्या है हंसा तो?
1: नहीं बस हम ही बार हंसी थे ना कि हाँ। हमार जो राधा रानी है वो खुश तो है ही ना राधा रानी के गीत सुन के।
0: ये बात है तो राधा रानी तो आपो राधा रानी कान्हा जी के जन्मोत्सव मनाए के बाद तो हर कोई राधा रानी खुश है। अब आज अपने जब जन्मोत्सव है राधा रानी के तो हम लोग का है ना खुश हो जाए।
1: हाँ, हम आपके बात करें, हम अपने राधा रानी के बात करें हैं।
0: ये बात है। अच्छा चलो राधा रानी सेम टू यू। ठीक, और सारी सखी आप लोगों का भी सेम टू यू कहा जाते हैं ना कि अब खुशी के तो उत्सव है ये है और वैसे भी अपने आप का हमेशा खुश रखा जाए,
1: खुश रखा
0: और
1: जाए।
0: खुशी के साथ हर काम करा जाए, चाहे जाता दुख हो समस्या हो धीरे धीरे वो विघ्न बाधा धीरे धीरे टरी जरूर। और वैसे भी कहा जाता है जी गणेश जी के जो हम लोग जन्म उत्सव के रूप में जो उनके स्थापना करा जाते हैं तो गणेश चतुर्थी के पर्व में के उद्देश्य है उनके जन्म उत्सव के ऊपर उनके स्थापना करा जाता है। और जब उनके स्थापना करा जाता है तो हम लोग उनसे प्रार्थना करा जाते हैं कि हमारे लोगों के घर के विघ्न बाधा समस्या और हर चीज़ जो हम लोग का दुख कष्ट है भगवान हर लिया जाए और गलती हो तो क्षमा किया जाए। कहा से हर पूजा में पहले कलश पूजा और गणेश जी के आगमन की पूजा जरूर करा जाता है।
1: कोई भी पूजा में यहाँ कोई भी अनुष्ठान करे से पहले गणेश भगवान की पूजा जरूर
0: कहा ना जाता है कि उनके यथास्थान सबसे पहले है और सबसे पहले उनके पूजा करके तब हम लोग आगे पूजा की तरफ बढ़ा जाता है। तो जबकि उनसे प्रार्थना हम लोग पहले करा जाते हैं कि और उनके प्रार्थना के उद्देश्य भी यही है कि प्रथम पूजा जैसे उनके उनके करा जाता है तो हम लोग के एकता रहा है नहीं धर्म माँ अन्य धर्म माँ सबसे एकता रहा है और हमेशा समाज में एक रूपता सदव्यवहार सबसे बढ़िया से व्यवहार रहा है मेल मिलाप रहा है और सद्भाव के भावना से हमेशा अपने देश मोहल्ला समाज खुशहाली से भरपूर रहा है।
1: हाँ तो सखी अब 2 बजे के टाइम चेक होएगा।
0: अच्छा
1: हाँ तो अब चला जाए के बाद बात बतकही तो होते रहिए कि नहीं।
0: हाँ तो बात बतकही ना हो तो हम लोग के मुंह कैसे खुली वो तो बात है ये है तो चला जाए फिर हम लोग टाइम चेक की तरफ।
1: ठीक है।

0: एफओ मेगाहर्ज कृष्णसार जत्तिको तेज
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 2 बजेको छ
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी
3: हमका बिहा के खातिर सोफा दराज डाइनिंग जस सामान और ऑफिस के खातिर सामान खरीदे रहा है कहाँ जाई तो ठीक रही तनी बताई दियो हमका
4: सुना जाए आपका हम बताई थे आप नेपालगंज में हैं अपने घर के खातिर ऑफिस या तो दुकान के खातिर गुणस्तरीय फर्नीचर खरीदे चाह जात है तो अर्बन फर्नीचर एंड फर्निशिंग हब पराली में यहाँ जावा जाए हुआ पर यहाँ आर्डर के अनुसार बेड सोफा डाइनिंग टेबल ऑफिस टेबल ड्रेसिंग टेबल दराज जस तमामन मेर के फर्नीचर के सामान मिलत है उके साथन टिकाऊ सामान आकर्षक डिजाइन और उत्कृष्ट फिनिशिंग के साथन बनावा भी जात है
3: किफायती मूल और मैत्रीपूर्ण सेवा के साथन आपकी आवश्यकता के हिसाब से फर्नीचर तैयार किया जात है
4: एक दफी सेवा करे मौका दीन जाए संपर्क के खातिर सुर्खेत रोड नेपालगंज बांके संपर्क नंबर 9844885375 और 9808254037
5: नींद ना आए हमको हाय जग सोना
3: है भैया बहुत दिन से महिनवारी में यहाँ गड़बड़ी सफेद पानी बहाव और पेट पीराव समस्या से बहुत दुख पाए चुके हैं कहाँ जाए तो बढ़िया रही
6: हम भी पहले गैस्ट्रिक बवासीर और पेट के समस्या से बहुत परेशान रहें बाद में यहाँ नेपालगंज के मेडिकेयर क्लिनिक गए हुआ मर्दे और मेहरुए दोनों लोगों के समस्या के उपचार और ऑपरेशन एक ही जगह होत है अनुभवी विशेषज्ञ डॉक्टर से सेवा मिले के बाद अब बहुत आराम हुआ है
3: सही हुआ का सेवा मिलत है तो भैया
6: सुनो हुआ औरतन के बाझपन सफेद पानी महीनावारी में गड़बड़ी गर्भवती जांच बच्चादानी और स्तन संबंधी समस्या के उपचार होत है और पुरुष या अन्य बीमारी लोगों के खातिर गैस्ट्रिक बवासीर हर्निया अपेंडिक्स थायराइड पित्त थैली और शरीर में गिल्टी और तमाम मेर के लैप्रोस्कोपिक और लेजर सर्जरी सेवा भी उपलब्ध है
7: हाँ मेडिकेयर क्लिनिक में यहाँ वरिष्ठ लैप्रोस्कोपिक दूरबीन और लेजर सर्जन डॉक्टर कमर हसन अंसारी और वरिष्ठ लैप्रोस्कोपिक स्त्री और कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अमीरुन निशा से सेवा देते हैं आप भी आज कोई भी चेक जांच और ऑपरेशन के खातिर नाम दर्ता कह के तह दिल हुआ जाए
6: मेडिकेयर क्लिनिक नेपालगंज उप महानगर पालिका वाड़ा नंबर 11 बीपी चौक के नेरेन उप महानगर पालिका के कार्यालय के लाइन में यहाँ संपर्क नंबर 9749117886982242
8: सबके संयुक्त आवाज मेडिकेयर क्लिनिक मर्दे और मेहरुए दोनों लोगों के स्वास्थ्य उपचार के विश्वसनीय गंतव्य
3: खुशी के खबर हम लोगन के अपने शहर नेपालगंज में यहाँ सालों से सेवा देते आवा रहा नेपालगंज नेशनल अस्पताल में यहाँ विशेषज्ञ डॉक्टर लोगन से दैनिक रूप में यहाँ तमामन स्वास्थ्य सेवा प्रदान होते आवा है
6: ये अस्पताल में यहाँ दैनिक रूप से तमाम मेर के विशेषज्ञ लोगन से ओपीडी सेवा हो साथ तमाम मेर के सेवा होत रहा जानकारी करावा चाह जात है जैसे सर्जरी संबंधी संपूर्ण इलाज
3: प्रसूति और महिला लोगन संबंधी संपूर्ण इलाज
6: नस और हड्डी रोग संबंधी संपूर्ण इलाज
3: मस्तिष्क और मानसिक रोग संबंधी संपूर्ण इलाज
6: चर्म रोग संबंधी संपूर्ण इलाज
3: नाक कान और गटई संबंधी संपूर्ण इलाज
6: शुगर ब्लड प्रेशर हृदय रोग पेट छाती कलेजा संबंधी संपूर्ण इलाज
3: पैथोलॉजी लैब संबंधी संपूर्ण चेक जांच किया जाते है
6: वीडियो एक्सरे डिजिटल एक्सरे और संपूर्ण सेवा सहित गुणस्तरीय अस्पताल के साथ हैं हर एक महीना के अंतिम शुक्रवार काठमांडू मेडिसिटी अस्पताल से शुगर और थायराइड रोग के इलाज के खातिर डॉक्टर सुमन बराल आवश्यक जानकारी भी करावा जाता है
3: नोट ई अस्पताल में यहाँ कार्यरत संपूर्ण डॉक्टर लोगन से प्रत्येक महीना के अंतिम शनिवार निःशुल्क ओपीडी सेवा ले साथन जांच में यहाँ 20% छूट के व्यवस्था किया गया है
6: संपर्क नंबर 081536465 9249808665 और 9842808465

0: रेडियो कृष्णसार एफएम 94 मेगाहर्ज कृष्णसार जस तेज
1: कार्यक्रम घर अंगना के अंतर्गत शनिचर के दिन
2: स्वास्थ्य शिक्षा आयुर्वेदिक नुस्खा सहित घर अंगना में हम लोग आवाज आई
1: रेडियो क्रिस सार एफएम 94 मेगाहर्ज से देखा भी जाए और सुना भी जाए।
3: दिन भर चाहे जहां रही हो हमार पिया।
2: शनिचर के दिन और साथ ही हमार सखी चंदा
1: और हमार सखी संध्या कार्यक्रम घर अंगना
4: घर अंगना।

0: हाँ सखी,
1: हाँ सखी,
0: गाना सुनागा?
1: हाँ, तू न
0: तू
1: संभाले,
0: न संभाले तो कौन संभाले। वाकई वहाँ हम लोगन के जीवन के डोर जो है भगवान के ही हाथ में होते।
1: हाँ न, हम लोगन का आज के पता है न कल के पता रहते, सारा ज्ञान सारा का है भाग्य में, का हो का वाला सब ऊपर के।
0: हाँ का है ना सखी, हम लोग खाली एक खिलौना के तरीके से, चाबी जो है ऊपर वाले के हाथ में है, है कि नहीं? जितना
1: जिंदगी अगर
0: चलत है,
1: जन्म लेक बात का है ना, कि सुख और दुख लाग रहा था। हाँ। संघर्ष भी करा जाते है, सुख भी मिलत है, दुख भी आवत है, कष्ट आवत है, बाधा
0: उतार चढ़ाव लगा रहा थे,
1: रास्ता ढूंढे काम हमारे लोगन के, बाकी तो सब भगवान ऊपर देखा था।
0: लेकिन वही बात है, हम लोग एक जान जिसे जान वाला जिसे जिमा जान पड़ जाते हैं जो खिलौना में है, वही हम लोग खिलौना तरीके से, चाबी तो ऊपर वाले के हाथ में है। बुद्धि है और भगवान विवेक भी दीन है, बुद्धि दीन है, हाथ दीन है, दिमाग दीन है, गोड़ हाथ भी दीन है, मुंह भी दीन है, मतलब हर एक चीज से परिपूर्ण करके हम लोगन का ये धरती पर।
1: मानव जाति कहा नहीं आता, मानव जाति बड़े कष्टन के बाद, बड़े अवतारण के बाद मिलत है, और जब मानव जाति पाए के बाद हम लोगन का ऐसा कार्य ऐसा काम करे के चाहिए कि फिर हम लोग मानव जाति में आवे के लायक रहा जाए। और वैसे भी कहा जाते सखी, अब गीत संगीत तो है ये भाव के ऊपर हो जाता ना, जब कोई गाना मन का छू जाता है तो हम लोग उमा लीन हो जावा जाता है,
0: भाव के भूखे होते भगवान। हाँ, जी
1: तो ऐसे सखी, अब हम लोग गणेश जी के आगमन के ऊपर तो बातचीत करते रहा जाते है, और आज विशेष है माता राधा रानी जी के जन्म उत्सव है। तो राधा रानी के जन्म उत्सव के हर साल की भाद्रपद के जो हम लोग के मतलब अभी तो तिथि अनुसार मास के जो शुक्ल पक्ष रहा थे अष्टमी तिथि का, राधा रानी अष्टमी माँ, इनके जन्म उत्सव बड़े धूमधाम से मनावा जाता है। और राधा रानी के जन्म उत्सव माँ जैसे तिथि समेत इनके जन्म भी दोपहर के 12 बजे भवा रहा कहा थे, तो दोपहर 12 बजे रहा, हम लोग भी दोपहर के समय से तो आप लोगों के साथ महान, तो कहे ना राधा रानी जी के भी उत्सव कहे ना साथ गीत संगीत के साथ हम लोग मनावा जी, और मनावे क्या है, मन में तो हम लोग भक्तिभाव जते रखा जाते हैं, सब मन के आधार पर ही मनावा जाते हैं। कला संस्कृति जो अपने रीति रिवाज है वो हम लोगों का समाज के साथ अपने आवे वाले पुस्तन का भी सिखावे कतर भी, वो कला संस्कृति के आगे उनके साथ हम लोग आगे बढ़ा जाते हैं,
0: बढ़ा जाते
1: ऐसे तो, उनके कहा नहीं सके उनके माता पिता है नहीं, माता पिता राधा रानी के माता पिता माँ कहा जाते है, बरसाना माँ, वृष भानु और उनके जो पत्नी रही कीर्ति, उनके माता पिता राधा रानी का माना जाता है। और बरसाना तो जाना जाता है कि बरसाना के क्षेत्र है राधा जी के बड़े धूमधाम से,
0: है ना,
1: जब भी हम लोग अरे जैसे मान लो कहागा मथुरा जावा जाए तो बरसाना के नाम पर ख्यात से रहते कि बरसाना जाए के, बरसाना जाए के, और बरसाना जाते खंड ही हमारे लोग के चारों तरफ दिमाग गुलाबी गुलाबी हो जाते है नहीं, तो बरसाना माँ इनके धूमधाम से इनके जन्म उत्सव मनाया जाते है, और जितना भी मथुरा में जितना भी मतलब राधा रानी के धूमधाम से हर जगह भजन गीत संगीत आरती और साथ ही राधा जी के जो श्रृंगार रहा थे ना, उस श्रृंगार उनके मूर्ति देख के जैसे लगा था कि राधा जी पे बोल दे हैं, अत्ता मतलब अत्ता आकर्षण रहा था, चमक रहा थे है नहीं, और जैसे राधा जी के जहाँ जगह कहते हैं उनका निधि बन कहा जाता है, तो माता जी के वहाँ विराजमान उनके स्थान है जो निधि बन में हम लोग जावा जाते दर्शन करा जाते है, तो ऐसे माता जी के उनके ऐसे खुशियाली से भरा रहा है, प्रेम संग्रह सबके साथ ऐसे बरकरार रहा है, और जैसे राधा रानी के जोड़ी कृष्ण जी के साथ हम लोग गाना गावा जाते और जो ग्रंथ अनुसार सुना गा है ऐसे सबके जोड़ी में प्रेम के बरसात होन करे,
0: और सबके जुबान पर भी राधे राधे राहत भी है।
1: हाँ,
0: है राधे राधे
1: राधे राधे के साथ जन्मदिन की हार्दिक शुभकामना है राधा जी का,
0: राधे जी का तो शुभकामना है।
1: हाँ तो सखी, अब राधे राधे तो हम लोग कहा गया, अब राधे राधे के साथ फिर आगे भी तो बढ़ा जाए।
0: हाँ सखी, बढ़ा तो जाए
1: ना, और टाइम में तो आपका तो बात बत कही करते रहा जाए।
0: अरे तो हमार नंबर आवा राधे राधे कहे करती तो आप कह दियो, ठीक है हम कह चुके हैं राधे राधे, इसी बात नहीं
1: राधे,
0: है हाँ, पूरा हो चुका हमार बात,
1: राधे, राधे,
0: चला जाए
1: चला जाए।
0: हाँ हाँ ठीक है, चलो ठीक है, कहाँ चला जाए, व्यापारिक विश्राम, बड़ी खुश ना हो। बाद में
1: देखो श्रोता, अब यही कहा था इतनी देर कती खुश करी ना, हम सोचे नहीं कुछ बोली नहीं है,
0: खुश कर दो ऐसी बात,
1: लेकिन अब क्या बताइए, जैसे हम नहीं बोले कि शायद सखी हमार भुलाई गई हो, लेकिन भुलानी नहीं है,
0: भुलाने अब सखी हम इन भूल जाइए तो कैसे हुई है।
1: हाँ वो बात है, कैसे हुई,
0: कैसे
1: हुई? अब आप भूल जाइए तो हम इनका कह दो कि आप कौन हो, तो आफत है
0: वो, तो हम आपका भूल ही नहीं सकते,
1: लेकिन आप नहीं उधर चलती हूँ, अब चलो विज्ञापन,
0: ठीक है चलो।
2: अब सुन्नुहोस् श्री स्टील्स रेडियो कथा तेस्रो तथा अन्तिम भाग। शर्माजीको घरलाई भूकम्पले हल्लाइरहेको छ, झ्याल बाहिर धुलोले ढाक्छ, बत्ती फोन सबको लाइन काटिन्छ, सब धेरै डराएका हुन्छन्, तर एकछिनमा भूकम्प रोकिन्छ। शर्माजीले श्री एफई 550D बनाएको घरलाई फेरि केही भएको हुँदैन, अनि त्यसपछि शर्माजीको परिवारको जिन्दगी ढुक्कले चल्न थाल्छ। अनि वर्षौं पछि फेरि एक दिन ठुलो भूकम्प आउँछ। श्री एफई 550D सर्वोत्कृष्ट भूकम्प प्रतिरोधक स्टील।
3: वाउ, प्लस टू परीक्षा पनि पास भयो, अब कुन कलेजमा भर्ना हुने होला?
4: ल है, बधाई छ। अनि तिम्रो उज्जवल भविष्यका लागि उत्कृष्ट विकल्प नेपालगञ्ज बहुमुखी क्याम्पस एनएमसी छ नि।
3: ए हो र, त्यहाँ के पढ्न पाइन्छ त, अनि त्यहाँको विशेषता पनि भन्देऊ न।
4: त्यहाँ ब्याचलर अफ बिजनेस स्टडिज बीबीएस तथा एसीसीए कार्यक्रमका लागि भर्ना खुल्ला भइसकेको छ। दक्ष तथा अनुभवी शिक्षकद्वारा गुणस्तरीय शिक्षण, वातानुकूलित एसी कक्षा कोठा, समृद्ध पुस्तकालय, अतिरिक्त क्रियाकलाप, नियमित फिल्ड भिजिट तथा औद्योगिक भ्रमण, आधुनिक शिक्षण वातावरण र विद्यार्थी मैत्री व्यवस्थापन सहित आफ्नो उज्जवल भविष्यको यात्रा सुरु गर्न सकिन्छ।
3: ल तिमीलाई धेरै धेरै धन्यवाद, त्यसो भए म पनि यही भर्ना हुन्छु।
5: हजुर, प्लस टू परीक्षा सफलतापूर्वक उत्तीर्ण गर्नुभएका सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूलाई हार्दिक बधाई तथा शुभकामना। उच्च शिक्षाको उत्कृष्ट गन्तव्य नेपालगञ्ज बहुमुखी क्याम्पस एनएमसीमा ब्याचलर अफ बिजनेस स्टडिज बीबीएस तथा एसीसीए कार्यक्रमका लागि भर्ना खुल्ला भइसकेको छ।
3: नेपालगञ्ज बहुमुखी क्याम्पस एनएमसी आदर्श ग्रुपद्वारा सञ्चालित, ठेगाना नेपालगञ्ज 10 बाँके औद्योगिक क्षेत्रको ठिक अगाडि। थप जानकारीका लागि सम्पर्क 98 5 80 36 5 77, 98 5 80 28 195 र 98 5 80 36 811। नेपालगञ्ज बहुमुखी क्याम्पस एनएमसी, सफल भविष्यको बलियो आधार।
6: नमस्ते दाई।
7: नमस्ते नमस्ते, धेरै दिनपछि देख्यौ त भाइ।
6: विदेश जान आँटेको दाई, प्रोसेस गर्दै थिए, अहिले भर्खरै एभरेस्ट इन्टरनेसनल पोलिक्लिनिक एन्ड डायग्नोस्टिक सेन्टरबाट स्वास्थ्य जाँच गराएर आएको।
7: समयमै सही ठाउँमा गएछौ त, अब जहाँ पाए त्यही स्वास्थ्य परीक्षण गराउँदा त ठगिने सम्भावना पनि त हुन्छ नि।
8: तपाईँ पनि वैदेशिक रोजगारीका लागि जाँदै हुनुहुन्छ भने नक्कली स्वास्थ्य परीक्षणदेखि सावधान।
9: सुदूरपश्चिम कर्णाली तथा लुम्बिनी प्रदेशको श्रम मन्त्रालयबाट मान्यता प्राप्त एकमात्र पुरानो नेपालगञ्जमा रहेको एभरेस्ट इन्टरनेसनल पोलिक्लिनिक एन्ड डायग्नोस्टिक सेन्टरमा आउनुहोस्। ग्यारेन्टीको साथ स्वास्थ्य जाँच गराउनुहोस्। अनलाइन स्वास्थ्य परीक्षण गराउनु नै सबैभन्दा उत्तम उपाय हो।
10: हाम्रा विशेषताहरू:
9: वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको ग्यारेन्टीका साथ अनलाइन मेडिकल गरिन्छ।
10: प्रत्येक दिन पेट, छाती, मुटु तथा सुगर, थाइराइड रोग विशेषज्ञबाट ओपीडी सेवा।
9: महिला तथा प्रसूति रोग सम्बन्धी उपचार सेवाको साथै निसन्तान, बाँझोपन सम्बन्धी नियमित उपचार तथा परामर्श सेवा।
10: प्रत्येक महिनाको तेस्रो बुधबार सुगर, थाइराइड तथा हार्मोन रोग विशेषज्ञ डाक्टर सुनिल चौधरीबाट उपचार तथा परामर्श सेवा।
9: प्रत्येक महिना हार्दिक आइबीएफ काठमाडौँका निसन्तान, बाझोपन, महिला तथा स्त्री रोग विशेषज्ञ डाक्टर अर्चना साक्येबाट उपचार तथा परामर्श सेवा।
10: अत्याधुनिक प्रयोगशाला, इको कार्डियोग्राम, इको ईसीजी, डिजिटल एक्सरे सेवा।
9: अत्याधुनिक एआई प्रविधि जडित 4D 5D भएको भिडियो एक्सरे सेवा।
10: प्रत्येक शनिबार प्रयोगशाला सेवामा 40%-50% सम्म विशेष छुट सेवा।
9: प्रबन्ध निर्देशक एभरेस्ट इन्टरनेसनल पोलिक्लिनिक एन्ड डायग्नोस्टिक सेन्टर, प्रहरी तालिम केन्द्रको पश्चिमपट्टि, एनआईसी एसिया ब्याङ्क भएको भवनको तेस्रो तल्ला, कारकान्तो चोक, नेपालगञ्ज।
10: सम्पर्क फोन नम्बर 081-530-274 र 98-580-21-822।
11: ओहो सर, कार्यक्रमको सबै तयारी त भयो, तर कहाँ गर्ने भन्ने टुङ्गो लागेन, के गर्ने होला?
12: किन चिन्ता गर्नुहुन्छ, न्यू कैलाश दर्शन होटल छँदैछ नि,
11: कस्तो होटेल हो कुन्नि, हामीले खोजेको सुविधाहरू छ कि छैन?
12: किन नहुनु ल सुन्नुहोस्, नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका राजा गेटदेखि 500 मिटर पूर्व रहेको यस होटलमा त गाडी पार्किङको सुविधा भएको, एसी रुमको व्यवस्था भएको, क्याबिन सहितको रेस्टुरेन्ट भएको, कार्यक्रमका लागि हल अनि अर्डर अनुसार सुपथ मूल्यमा खानेकुराको साथै बसोबास पनि व्यवस्था रहेको छ। एनिभर्सरी, बर्थडे तथा विशेष पार्टीको अवसरमा 15% विशेष छुटको पनि व्यवस्था छ।
11: यति सुविधा पाएपछि त अब हामी ढुक्क भएर न्यू कैलाश दर्शन होटलमै कार्यक्रम गर्नेछौँ।
12: हजुर, न्यू कैलाश दर्शन होटल, नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 20, राजा। सम्पर्क फोन नम्बर 98487 57466।

0: ओ सखी हमार,
1: हाँ हमार सखी,
0: हम तो का लगा कि आप वही मिया मस्त हो गीते सुने मिया।
1: नहीं आप कान बंद करे रही हो।
0: अच्छा कनवा तो बंद है।
1: नहीं बंद, अच्छा नहीं,
0: कान तो बंद है लेकिन
1: कान बंद है कि और बढ़िया से प्रश्न सुने खातिर आप कान में लगा है।
0: ये तो जो है सुने खातिर हो,
1: तो सुने
0: ये हेडफोन लगाया है तो कनवा तो बंद है, वो हेडफोन के अंदर है।
1: श्रोता हमारे सखी का गीत संगीत नया बढ़िया लगा था ज्यादा का।
0: अच्छा
1: आप समझ लीन जाए, बढ़िया सही बताए थे
0: सखी, अच्छा तो लगा था। लेकिन कहा है कि अब जो लोग गीत संगीत सुनावे करा था ना, उनके पास जो भंडार रहा था गीत संगीत से, तो समझ आया हुआ था कौन कौन गाना सुनाई का है, कौन गाना मतलब उनके पेट भरा रहा थे।
1: अच्छा
0: हाँ, अब जो अब हम हमारे कामे है सबका गीत
1: लेकिन
0: सुनाना।
1: हमरे समझ से बात ही है कि आपके पास तो भंडार भरा रहा था गीत संगीत से, लेकिन वो भंडार में से आप ये सोचा करत हो कैसा कौन गाना बजाए दी जो सबका पसंद आए जाए। सही कहा?
0: हाँ बस यही
1: मतलब सही कहा तो हाँ के हो, अगर आप
0: ना तो कहे, बस यही
1: मतलब सही कहा तो हाँ के हो, अगर आप ना तो कहे हो कि

0: आती है, आप चिंता ना करो, आप हम लोग जब भी कार्यक्रम करा जाता है तो कार्यक्रम अनुसार गीत संगीत बजावा जाता है। हाँ। वैसे तो गीत का तो भंडार है ये है,
1: वही तो सखी। हाँ। का है कि ना, अब आज
0: गणेश जी के उपलक्ष्य है, राधा रानी जी के है,
1: तो वही संबंधित गीत संगीत भी सुनाए। हाँ। और साथ ही लोगों का अच्छा भी लगा हुई है।
0: हाँ, तो जैसे
1: वही सोचे पड़ा था कि कौन गीत सुनाई,
0: बस ज्यादा न सोचा जाए, ज्यादा न सोचा जाए,
1: सोच के भी हम लागू भी कर दी थे, ऐसी बात नहीं है।
0: अच्छा,
1: बजाए भी।
0: हाँ, तो हम सुनी दी थे ना, ऐसी बात नहीं है।
1: सुने
0: बस हम सुन दी,
1: बस यही बात,
0: बस सुनेगा आगे भी है कि हम जल्दी से गीत संगीत सुनी। लेकिन बस सखी से हम बार बार हमका कहा कि ना परे सोचे थे, और जब कही तो नहीं है तो बड़ी खुश रही। देखो अब बस होता आप लोग जाना गा है ना कि अब नहीं कह रहे हैं, हम बड़ी खुश रहे हैं। लेकिन हमारे सखी बाद में कहीं कहे बड़ी खुश हो, विज्ञापन के तरफ चलो कहीं।
1: अरे तो
0: चलो
1: मा,
0: कोई बात
1: मा,
0: नहीं,
1: खुश तो कराए
0: नहीं, वो तो जरूरी है। अब विज्ञापन के तरफ क्या होते कि विज्ञापन के श्रोता जो लगानी लगाए उन्होंने लोग सोचे कि हम प्राविधिक का गरिया ही है, कहीं देखो हमारे समय अनुसार विज्ञापन नहीं बजा।
1: हाँ,
0: श्रोता बात ही रहा था,
1: विज्ञापन दाता लोग अपन विज्ञापन सुना भी करते हैं, जो टाइम दिए पड़ा था ना, तो वही टाइम में वो लोग सुनत भी हैं। तो
0: चलो कोई बात नहीं, हम लोग तो बातचीत कराया था गणेशा जी के बारे में, है नी, तो बाल गणेश जी के जो जन्म उत्सव मनावा जाते हैं। हाँ। वो तो नान मुन छोटे मोटे लाल उनके जन्म उत्सव मनावा जाते हैं ना, तो जन्म उत्सव में का बात ये है कि जो हम लोग उनके उद्देश्य के ऊपर कि जो हम लोग के घर में विघ्न बाधा खातिर है नी, घर में सुख शांति खातिर समृद्धि खातिर, और वैसे भी उनके साथ रिद्धि सिद्धि तो रहते हैं।
1: हाँ।
0: नी, तो घर में जो सुख समृद्धि के खातिर उनके आगमन उनके स्थापना हम लोग पहले करा जाते, और उनके स्थापना पहले काहे भवा यहू का तो हम लोग का जाने जरूरी है।
1: हाँ, और उनके पूजा सर्वश्रेष्ठ काहे करा जाते,
0: काहे करा जाते। हाँ, तो शुरुआत करा जाए सखी,
1: तो सखी थोड़ा सा बाद में शुरुआत कर लिया जाए।
0: हाँ
1: हाँ, पहले व्यापारिक विश्राम के तरफ चला जाए,
0: बड़ी
1: के बाद यही के बाद विषय करा जाइए, ठीक है।
0: ऐसा बोल पहले बोला थे जैसे लगा थे कि आप शुरुआत करे जावा जाते, बाद में ब्रेक लगाए,
1: थोड़ा टेरर रहा, थोड़ा टेरर दिया
0: सारा दोष हमने सखी के, आप माना जी हमारा कोनो गलती
1: नहीं है सखी, मतलब दोष के बात नहीं है, हम लोग टाइम के पाबंद
0: में चला जाए, फिर टाइम के पाबंद में तो चला जाए फिर।
2: हाय, के गर्ने होला अब, सुगर पनि बढ्दैछ, थाइरोइडको समस्या अझ छुट्टै छ, कति ठाउँमा देखाएँ तर भएन।
3: ए तिमी यति चिन्तित किन, के भयो फेरि?
2: के भने नि, डाक्टरले मलाई हार्मोनको समस्या छ भन्नुभयो, अनि त्यसैमा बच्चा नहुँदा मलाई झन् टेन्सन भइरहेको छ।
3: ए अब चिन्ता लिनु पर्दैन, मैले राम्रो खबर सुनेको छु।
2: कस्तो खबर?
3: अब प्रत्येक दिन सुगर थाइराइड तथा हार्मोन रोगका विशेषज्ञ डाक्टर अल्ताबान राही, एमडी इन्टरनल मेडिसिन टियु, एन्डोक्राइनोलोजिस्ट सर गंगाराम हस्पिटल दिल्ली यहाँ नै सेवा दिनुहुन्छ।
2: ए साँच्चै?
3: अझै सुन, महिला बाझोपन तथा निसन्तान रोग सम्बन्धी पनि प्रत्येक दिन चेक जाँच तथा परामर्श सेवा पनि उपलब्ध छ।
2: ए त्यो त झन् राम्रो
3: हो नि। डाक्टर पूनमाचारी एमबीबीएस, एमडी केयु, IVF स्पेशलिस्ट इंडिया र डाक्टर सूरज राज भट्टराई MBBS MSKU वरिष्ठ कंसल्टेंट जनरल तथा लैप्रोस्कोपिक सर्जन बाट सेवा पाइन्छ।
2: वाह, अब त मलाई धेरै ढुक्क लाग्यो।
3: अझै अरु सेवाहरु पनि छन्, दैनिक ओपीडी सेवा, गुणस्तरीय फार्मेसी सेवा, भिडियो एक्सरे, एक्सरे, ईसीजी तथा सम्पूर्ण प्याथोलोजी सम्बन्धी जाँच सेवा।
2: यो त पूरा प्याकेज जस्तै भयो नि।
3: हो त, अब ढिला नगर, जाऊ आजै गइहाल उपचार गर्न।
2: हजुर, आजै सम्पर्क गर्नुहोस् सुपर पोलिक्लिनिक एन्ड डायग्नोस्टिक सेन्टर, बिपी चोक, नेपालगञ्ज। फोन नम्बर 081531860 र 081531861।
3: अब चिन्ता होइन, समाधानको सही ठाउँ सुपर पोलिक्लिनिक।
4: नाक कान र घाँटीका रोगीहरूको लागि विशेष सूचना।
5: भेरी अञ्चल अस्पतालमा लामो समय काम गरी सेवानिवृत्त प्रमुख कन्सल्टेन्ट ENT विशेषज्ञ डाक्टर रमेश कुमार श्रेष्ठ र हाल भेरी अञ्चल अस्पतालमा नाक कान घाँटी विभागमा कार्यरत ENT कन्सल्टेन्ट डाक्टर सगुन श्रेष्ठसँग उपचारको लागि मिलिजुली मेडिकल हल इदगाह रोड नेपालगञ्जमा हप्ताको सातै दिन सेवा उपलब्ध छ। हाम्रा थप सेवाहरू एक्सरे, इन्डोस्कोपी, प्रयोगशाला, अडियोग्राम तथा आवश्यक परेको खण्डमा बिरामीलाई अपरेसनको पनि व्यवस्था छ। विस्तृत जानकारीको लागि मिलिजुली मेडिकल हल इदगाह रोड नेपालगञ्ज, सम्पर्क फोन नम्बर 081531380, मोबाइल 98।

0: 80 30 479 र 98 4 80 21 380।
1: आमाको उपचार गरौँ भनेको कहाँ जाने होला?
2: कान्ति आरोग्य अस्पताल छँदैछ नि। पश्चिम नेपालकै अनुभवी र उत्कृष्ट विशेषज्ञ तथा शल्य चिकित्सकद्वारा विश्वस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पनि यही उपलब्ध छ।
1: हो र, यो अस्पतालमा के सुविधा छन् नि?
2: 24 घन्टा इमर्जेन्सी सेवा, दैनिक ओपिडी सेवा, दूरबीन तथा लेजर प्रविधिबाट शल्यक्रिया, जलेको घाउको उपचार गरिनुका साथै एनआइसियू, पिआइसियू, आइसियू, हाइटेक अपरेसन थिएटर र सुरक्षित प्रसुति सेवा पनि यही उपलब्ध छन्। अझ यहाँ त बालबालिका तथा नवजात शिशुहरूको सामान्यदेखि जटिल सबै रोगहरूको सबै किसिमको उपचार गरिन्छ नि।
1: त्यसो भए आमालाई लगेर आजै जानु पर्यो।
2: कान्ति आरोग्य अस्पताल, सुर्खेत रोड, नेपालगञ्ज। सबै किसिमका उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा एकै छाना मुनि।
1: सम्पर्क नम्बर 081-535-717।
3: बाबा के कान पिरात है, दवाई करावे खातिर कहाँ ले जाई?
4: बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेहार केंद्र जाऊ न। यहाँ अनुभवी विशेषज्ञ और वरिष्ठ कान स्वास्थ्य प्राधिक लोगन से हरेक दिन कान परीक्षण किया जाता है। इतन कहाँ, यहाँ तो लंबे समय से कान पकते आवा, जीर्ण रोग, कान में यहाँ ढूसी भवा, कान खजुआब, कान से कम सुनाई देव, कान बंद हो, बीमारी लोगों के दवाई दरमत और सुझाव सलाह देते हैं। और साथ ही लंबे समय से कान पकते आवा, कान के जाली में छेद भवा, कान के हड्डी गले वाला रोग के शल्य क्रिया द्वारा दवाई करत हैं। साथ ही कान कम सुनने वाले बीमारी लोगों के यहाँ कान में लगावे वाला सस्ता से लेके महंगा महंगा तक मेरे मेरे के मॉडल के कान की मशीन हेयरिंग एड बिरामी लोगों के इच्छा अनुसार उपलब्ध करावत है। बीटी, सीआईसी, आरआईसी जैसन मशीन भी यहाँ उपलब्ध है।
3: ए अस है तो बाबा के यहाँ ले जाए के दवाई करावे से बढ़िया से सुने लगी है तो?
4: हाँ तो समय में यहाँ दवाई करावे दवाई दरमत संभव है। बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेहार केन्द्र प्राली, नेपालगंज 6 फुलटेकरा, आर्मी ब्यारेक के सामने, राप्ती रोड, बांके। संचालक पूरन चौधरी। संपर्क नंबर 98 4 80 20 697, 98 5 80 23 697 और 98 0 14 83 697।
3: बहिरोपण निवारण कार्यक्रम में यहाँ सहभागी हुआ जाए, नियमित रूप से कान के जांच करावा जाए। खुशी के खबर, हम लोगन के अपने शहर नेपालगंज में यहाँ सालों से सेवा देते आवा रहा नेपालगंज नेशनल अस्पताल में यहाँ विशेषज्ञ डॉक्टर लोगन से दैनिक रूप में यहाँ तमामन स्वास्थ्य सेवा प्रदान होते आवा है।
4: ये अस्पताल में यहाँ दैनिक रूप से तमाम मेर के विशेषज्ञ लोगन से ओपीडी सेवा हो, एक साथ हैं तमाम मेर के सेवा होत रहा जानकारी करावा चाहा जात है। जैसे सर्जरी संबंधी संपूर्ण इलाज,
3: प्रसूति और महिला लोगन संबंधी संपूर्ण इलाज,
4: नस और हड्डी रोग संबंधी संपूर्ण इलाज,
3: मस्तिष्क और मानसिक रोग संबंधी संपूर्ण इलाज,
4: चर्म रोग संबंधी संपूर्ण इलाज,
3: नाक कान और गटई संबंधी संपूर्ण इलाज,
4: शुगर, ब्लड प्रेशर, हृदय रोग, पेट, छाती, कलेजा संबंधी संपूर्ण इलाज,
3: पैथोलॉजी लैब संबंधी संपूर्ण चेक जांच किया जाते है,
4: वीडियो एक्सरे, डिजिटल एक्सरे और संपूर्ण सेवा सहित गुणस्तरीय अस्पताल के साथ हैं। हर एक महीना के अंतिम शुक्रवार काठमांडू मेडिसिटी अस्पताल से शुगर और थायराइड रोग के इलाज के खातिर डॉक्टर सुमन बराल आवश्यक जानकारी भी करावा जाता है।
3: नोट, ई अस्पताल में यहाँ कार्यरत संपूर्ण डॉक्टर लोगन से प्रत्येक महीना के अंतिम शनिवार निःशुल्क ओपीडी सेवा ले साथ जाँच में यहाँ 20% छूट के व्यवस्था किया गया है।
4: संपर्क नंबर 081-536-465, 98-249-80-665 और 98-482-80-465।

0: वार्षिकोत्सवको अवसरमा प्रस्तुत छ सुविसु अपर्चुनिटी। यस योजना अन्तर्गत ग्राहकहरूले पाउनुहुनेछ 25 MBPS इन्टरनेट र क्लियर टिभीको फुल HD प्याकेज प्रति महिना मात्र रु 1040 र 65 भन्दा बढी HD च्यानल भएको क्लियर टिभीको प्याकेज प्रति महिना रु 221। साथै दामी म्युजिकको प्रिमियम प्याकेज 3 महिनाका लागि निशुल्क। शर्त र नियमहरू लागू हुनेछन्। थप जानकारीका लागि www.subisu.net.np सुबिसु।
1: अपन स्वास्थ्य के ख्याल रखब सच्चा आत्मविश्वास हुए, वही से तो नेपाल परिवार नियोजन संघ बाके शाखा विगत लंबा समय से आप लोगन के सेवा में यहाँ समर्पित है।
2: हमरे यहाँ पूर्ण गोपनीयता के साथेन गर्भपतन, परिवार नियोजन के साधन, बच्चेदानी के मुंह और स्तन कैंसर के परीक्षण और यौन और प्रजनन स्वास्थ्य संबंधी परामर्श सेवा उपलब्ध है।
1: विशेष सुविधा
2: अब हरेक इतवार के दोपहरे 3 बजे से 5 बजे तक स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संदेश आचार्य के द्वारा विशेष परामर्श और उपचारों भी पावा जाए।
3: देर न कीन जाए, आज स्वास्थ्य परामर्श लीन जाए। पता नेपालगंज उप महानगर पालिका वार्ड नंबर 9 रामलीला रोड नापी शाखा के अगारी। फोन नंबर 081-530-598।
4: हाम्रो बिहे भएको पनि 8 वर्ष भइसक्यो। सबैले एउटै प्रश्न सोध्छन्, खुसीको खबर कहिले सुनाउने भनेर।
5: मलाई थाहा छ तिमी कति पीडामा छौ, तर हामीले अहिले आशा मार्नु हुँदैन।
4: कति अस्पताल धायौ, कति उपचार गरायौ, अब त सपना पनि अधुरै रहने हो कि जस्तो लाग्न थालेको छ।
5: होइन, हामीसँग अझै आशा छ। मैले शुभश्री IVF क्लिनिकको बारेमा धेरै सुनेको छु, जहाँ धेरै दम्पतिहरूको काख भरिएको छ।
6: सन्तान सुखको यात्रामा तपाईँको भरोसाको साथी शुभश्री IVF क्लिनिक, अनुभवी विशेषज्ञ चिकित्सक, आधुनिक प्रविधि र व्यक्तिगत हेरचाह सहित।
4: हाम्रो जीवनमा पनि आखिर त्यो दिन आयो।
5: धन्यवाद शुभश्री IVF, हाम्रो सपना साकार बनाइदिनु भएकोमा।
6: थप जानकारीका लागि शुभश्री IVF क्लिनिक, सोल्टीमोड, काठमाडौँ। फोन नम्बर 98-61-14-16-99।

0: रंगा उदय देश मेरो एवरेस्ट
1: रेडियो कृष्ण सार एफ एम 94 मेगाहर्ज कृष्ण सार जस तेज

0: कुछ बोलो सखी, चुपान का हो?
1: अब बोले, मौका दे तब तो बोला जाए। अब आप अब हाँ, कहीं ना तो सर की उधर चलो, अब उधर चलो कह दे हो इशारा, तो किधर जाए? पहले इशारा मिले,
0: अब इधर रहो,
1: इधर रही,
0: हाँ इधर रहो,
1: ठीक है। तो बातचीत तो हम लोग करे जाते रहा है कि आखिर गणेश जी के पहला पूजा उनके काहे वो थे।
0: अच्छा, याद है
1: सबसे पहले उनके पद स्थापना काहे करा जाते है, हाँ कलश की स्थापना काहे करा जाते है। तो आप बिचम के हो सखी, अब चुपाए जाओ, उधर चलो।
0: अच्छा, मतलब तब से चुपे हो, वही मौन
1: चुपे मौन, तो रहन भाई।
0: हाँ, मौन धारण करे रही हूँ, हम बोल कर रहे हैं तो बोले हो।
1: हाँ ये हाँ वो बात सही है, मौन धारण करे रहे, हम बोलबे नहीं करे रहे, ठीक।
0: अच्छा तो आप बोल दो,
1: नहीं तो अब चला जाए हम लोग बातचीत कार्यक्रम
0: का, धीरे धीरे
1: चला जाए गणेश जी के बातचीत करा जाए। गणेश जी के स्थान उनके सबसे पहले का है
0: सखी, हम जेबे नहीं यही बैठ के,
1: नहीं चला जाए,
0: नहीं बात यही करो,
1: मतलब अपने सोच कर ले चला ए, जाए ना,
0: सोच का
1: हाँ,
0: चलो सोच,
1: हाँ सोच चला जाए। अभी सोच को हुए, देखो हम आज ज्यादा दिन पर बोले हैं सखी,
0: अब आप ही बताए दो ना, आप ही तो कहो ना,
1: हमारे लोग
0: तो कहो,
1: हाँ जो मन माँ हाँ। जो चीज हम लोग प्लान बनावा जाते है, कोई चीज के शुरुआत करा जाता है, तो पहले प्लान के साथ सोच के विचार के तब करा जाता है, हाँ। सोच कहा जाता है,
0: वही सोच कहा जाता है। शुरुआत आप करे हो तो आप
1: ही ना कहो कि सखी आप पढ़ावे लगी बैठ के हमका,
0: आप आदत कहाँ जाइए, आदत
1: वो माफत है, आदत से मजबूर है। पहले प्रश्न करिए सोच, तो हम तो आपसे पूछे रहे ना, आप कहे नहीं बताए रहे।
0: अब मास्टर, अब देखो बताए,
1: नहीं ना बताओ, नहीं रहा है तो आप ना बताओ तो ठीक है, हम लोग चला जाए। हम लोग
0: पहले जो बात कर रहे हो,
1: नहीं बाल गणेश जी के बात करा जी, हम लोग बाल गणेश जी के बात करा जी, कहे से उनके आगमन हो चुका है, आज कते दिन हो गवा है,
0: बहुत दिन,
1: यानी अब उनके विदाई के समय ने रात है सखी, ठीक। तो हम लोग बातचीत करा जाता रहा है कि उनके सबसे पहले पूजा अर्चना स्थापना पूजा में सबसे पहले काहे हो थे, ठीक।
0: हाँ
1: तो सखी आप तो सुने हुई हो,
0: हम सुने हैं, आप बस वही है,
1: वही
0: जो
1: है
0: जो हम बताए वही आप बताए, तो आप ही बताए।
1: हाँ तो जैसे गणेश जी शिव माता पार्वती जी के पुत्र हुए, ठीक। तो एक दिन दोनों पुत्र का अपने
0: कार्तिकेय
1: जी, हाँ, कार्तिकेय जी का गणेश जी का बलाइन, शंकर भगवान अपने पास पुत्र लोगन का बलाइन, ओके बात कहीं कहीं कि हम पूरे ब्रह्मांड में जो सबसे पहले परिक्रमा कैके आई ओका सबसे उच्च स्थान मिली, ठीक। अब दुई जना का बलाय के कहीं ना है, और कहीं ना जे सबसे पहले आई ओका उच्च स्थान मिली, तो कार्तिकेय जी तो बड़े तैयारी के साथ जल्द ही पूरा ब्रह्मांड के परिक्रमा,
0: हाँ, परिक्रमा
1: की जल्दी जल्दी करी उच्च स्थान पावे खातिर, भाई कंपटीशन और कोनो चैलेंज होते तो पहले आदमी तो करते हैं ना कि हम जल्दी से हम फर्स्ट आई
0: या हम
1: जल्दी करी,
0: हाँ, तो तैयारी के साथ
1: गणेश जी वही तिर खड़े रह गए, तो शंकर पार्वती जी सोचने लगी यही तिर का है खड़े हैं
0: पहले, लेकिन गणेश भगवान अपने माता पिता के वरी परी मतलब किनारे किनारे जैसे मतलब
1: तो वही गोल, तो पहले खड़े रह गए, हाँ, तो लेकिन शंकर जी और पार्वती जी के सोच तो आएगा वह कि हम तो कहे हैं दोनों जना का कि परिक्रमा कहीं के आओ, लेकिन गणेश जी यही तिर काहे खड़े हैं। अब भाई शर्त रख चुके रहे तो पूछताछ तो ज्यादा नहीं करे बना, हाँ। लेकिन गणेश जी शुरुआत हाथ जोड़िन और शंकर पार्वती जी के परिक्रमा करे लागे करे लागे करे लागे, तो भाई बोले तो बाध हो
0: गए,
1: तब शंकर जी बोले परिक्रमा कह के आए फिर अपन नमस्कार प्रणाम करिन, तो कहिन कि हम तो कहा रहा परिक्रमा करे कहते ब्रह्मांड के मतलब कह के आओ तब सबसे उच्च स्थान मिली, और गणेश जी आप हम यही तिर कहे परिक्रमा करो, तो गणेश जी कहिन सब ब्रह्मांड से सबसे उच्च तो माता पिता होते हैं, है नी, और हम सबसे पहले अपने माता पिता जो हमका ब्रह्मांड में लावा है, जो हमका जन्म दी से जो संसार का देखे एक मौका दही ने हम उनके परिक्रमा करके तो जानो ब्रह्मांड के परिक्रमा कर लिया।
0: हाँ हाँ।
1: अभी के करते करत जानो कि आप तो भाई सबसे पहले तो शंकर जी आशीर्वाद दिहिन कि कहीं भी कोई भी पूजा अर्चना मा स्थापना मा सबसे पहले गणेश जी के स्थापना हुई तब पूजा आगे बढ़ी, यही मारे गणेश जी के यथा स्थान पहले सबसे पहले रहा थे,
0: हाँ तो यही मारे उनके पूजा सर्वप्रथम पहले उनके किया जाते हैं,
1: हाँ।
0: और उनके पूजा करे के ही बाद जो है कोई भी पूजा सफल माना जाता,
1: हाँ,
0: है
1: उनके उद्देश्य ये भी मिला था ना सखी,
0: हाँ।
1: कि सबसे पहले भगवान के दर्जा में सबसे पहले मातारी बाप का खुश रखा जाए, मातारी बाप का मतलब उनका भगवान तरह सोसरा माना जाए,
0: हाँ।
1: उनके सेवा करा जाए, दुख कष्ट उनके हम लोग बाल बच्चे इनका उनके ध्यान रखे पर।
0: हाँ, और चारों धाम जो है अपने ही घर में ही विराजमान हाँ। है, तो चारों धाम जाए से पहले अपने घर में जो माता पिता हैं तो उनके परिक्रमा करा जाए और उनके जो है सेवा सत्कार किया जाए, आदर सम्मान किया जाए। सबसे हाँ। बड़ा तीर्थ यही वही हुए है ना सखी।
1: हाँ सखी, तो उद्देश्य के साथ कई उद्देश्य में जुटे हैं। कैसे ब्रह्मांड, तो ब्रह्मांड जैसे हाँ। जब तक हम लोगों का महतारी बाप जो हम लोग का जन्म दिन जो संसार दिखाए तभी तो हम लोग ब्रह्मांड देखागा, तभी तो आंखी खोलागा बाहर आके। तो सबसे पहले ब्रह्मांड तो हम लोग के माता पिता होंगे, तो उनके उनके सम्मान, उनके आदर सम्मान करब, उनके हर संस्कृति कला का हम लोग का सीखब अपनावब, और साथ ही सही गलत के पहचान कराब भी महतारी बापे हम लोग का सिखावत है। और उसके बाद हम लोग सबसे पहले पूजा अर्चना महतारी बाप के हम लोग का भक्ति अपने संसार में रखे पड़ा। और भगवान जी तो हुई है जो हम लोग का बुद्धि विवेक के खातिर, सही गलत के पहचान करे खातिर बुद्धि हमका लोगन का खुद दहीन है कि आप लोग सही गलत के पहचान करो।
0: हाँ, तो सखी अब हम लोग कार्यक्रम के भी दम अंतमा भी आई चुका।
1: अच्छा
0: हाँ, देखा जाए।
1: अच्छा देखा हाँ। जाए ना ही, अब अंतमा आएगा हुआ है तो देखा जाएगा। अब विदा लेख समय भी आएगा है, तो पहले विदा लेके चला जाए नी सखी।
0: हाँ तो सखी, विदा लेके चला जाए, फिर कहाँ आए मिली कार्यक्रम के समय
1: ना आवे दे हो।
0: अच्छा ठीक है, अब दूसरे के मौका तो दिया जाए।
1: हाँ जरूर। तो श्रोता आप लोग जाना जाते हैं, और आज हम लोग कई चीजन के बातचीत करेगा जो विशेष दिन परिगवा, कैसे कार्यक्रम का जो विशेष दिन शनिचर का जो परिगवा उसका तो समेटे हम लोग का पहले प्रथम स्थान रहा था। जैसे कि हम लोग गणेश जी हम लोग के अब आए वाले जैसे बीफे के उनके जहाँ तक विदाई हुए 10 दिन पूरी आए के 11 दिन हम लोग विदाई करा जाते हैं। तो विदाई करे के बाद तो दुख तो लगते हैं, जिनका हम लोग 10 दिन रख के पूजा अर्चना भव्य के साथ हो हल्ला के साथ कीर्तन भजन में लीन रहा जाते हैं, फिर विदाई करा जाते हैं तो दुख होता सुनसान हो जाते हैं। लेकिन जाते उनके विराजमान तो हमेशा राहत है नहीं?
0: सबके घर में रहते हैं, सबके दिल में रहते हैं। हाँ
1: हाँ, उनके तो, साथे साथे अब उनके बाद राधा रानी के आज रहा जन्मोत्सव, उनके जन्मोत्सव हम लोगों के दिमाग में सवेरे से है भाई, आज उनके जन्मदिन है, उनके पूजा अर्चना उपवास भी रखा जाता है। अब उनके साथे साथे आज जैसे हम लोगों के नेपाल के असोज 3 गते भाई, जैसे कहा जाता है कुंवार 3 गते असोज 3 गते आज संविधान दिवस है, तो संविधान दिवस भी आप लोगों का शुभकामना, और फिर से शुभकामना कहा जाता है। कैसे देश में अगर कानून नहीं है तो देश कैसे चली, सबसे बड़ा मूल कानून अब संविधान दिवस का ही हम लोग कहा जाता है। तो आज के दिवस उन सुख में जाए, आए वाला कानून और अच्छे से लागू होए, अच्छे से बने, और हम लोग के देश के हर चीज़ के पहचान, हर चीज़ के गलत सही के निर्णय बढ़िया से बराबर होए, यही कहते हैं। अब हम लोग कार्यक्रम के अंत में आए गए हैं, कैसे इससे पहले तो सखी बताए दी नहीं कि अंत महान, तो सखी अब हम लोग विदाई लिया जावा जाते हैं।
0: हाँ।
1: तो श्रोता आप लोग जान गए होगा अब हम लोग विदाई लिए जावा जाते हैं, तो अगले हफ्ता फिर हम लोग नया विषय वस्तु के साथ उपस्थित हुए। और आज के खातिर रेडियो के संसार FM सुनते रहा जाए, और हमारे लोग की ये जो वीडियो बनी थोड़ा संक्षिप्त माँ इका हम लोग कहाँ पोस्ट करा जी सखी, कैसे और हमारे श्रोता लोग सुनिए तनियस बताए दो।
0: हाँ, तो किसार FM के पेज है सखी।
1: हाँ।
0: उमा जो है पोस्ट किया जाते हैं किसार FM के फेसबुक पेज में।
1: हाँ।
0: और यूट्यूब में भी रहा थे पोस्ट किया जाते हैं, और इके थोड़ा सा छोटा सा शॉर्ट वीडियो छोटा वीडियो हाँ। जो है टिकटॉक में भी हम लोग पोस्ट करा जाते हैं।
1: टिकटॉक के आईडी भी तो है कृष्ण सार के, टिकटॉक आईडी है हाँ, और हम लोग के व्यक्तिगत भी बनावा गया
0: हाँ।
1: है
0: हाँ, जैसे कि हमारे सखी के घर अंगना टिकटॉक है, एक जो है प्रोफेशनल ऑफिसल है, ऑफिसल है टिकटॉक, वो मैं पोस्ट करती हमारे सखी। और एक हमारे मतलब RJ चंदा जी माँ, हम दोनों सखी के पिक लगा हुआ है, मतलब फोटो लगा हुआ है ना, तो उमा हम लोग
1: सखी सहेली से मिला जुला हर कार्यक्रम के हम लोग टिकटॉक पोस्ट करा जाते हैं। तो ऐसे आप लोग ही कार्यक्रम का जो नए सुन पावागा है तो जरूर हम लोग लाइव कार्यक्रम जो रिकॉर्डिंग रखा जाता है उसका भी सुना जाए, और प्रतिक्रिया जरूर दिया जाए, और सलाह सुझाव आप लोगों से हम लोग विनती करा जाते हैं कि सलाह सुझाव जरूर दिया जाए, हम लोग आगे आए वाला कार्यक्रम का फिर से होगा और संक्षिप्त में बढ़िया से छाट बटोर के बढ़िया से बनावे कोशिश करा जाए। तो यही कहते हैं संपूर्ण श्रोता लोग, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है, और साथ ही हम लोगों का विदा दिया जाए। तो हम सखी संध्या
0: और हम सखी चंदा,
1: नमस्कार
0: नमस्कार,
1: राम राम,
0: राम, राम
1: शुभ दिन, राधे राधे
0: राधे राधे,
1: जय गणेश,
0: जय गणेश।

0: 94 MHz कृष्णसार जत्तिकै तेज
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 10 बजेको छ
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी